0: गोइला येनो
1: कानुंग रोज माम्याकिंग
2: ते मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिने मामु
0: यंगी रिमठिम दिंगी जो थनलबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयास की

बागी जानी ओला कैले न फर्क दोरैछ बागी जानी खोला कैले न फर्क दोरैछ

0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9856202779।
1: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन के हवा।

किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछलेना ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर

0: अरे गुटों में स्वैग है, अरे गुटों में स्वैग है, अरे गुटों में स्वैग है, अरे गुटों में स्वैग है।
1: शुपोए पादशाह
0: बनता रहे फ्लाइट बॉय, हम लाइफ पे हाई बॉय, ये तू रख तेरी राय बॉय, ये हमसे जलता तू वाई बॉय, डाउन हेट ऑन मी ब्रो, मैं नेचुरली कूल, तू जो में है क्लास तो मैं हूँ तेरा कूल, रूल न तोड़े हम करते हैं बेंडो, शुरू न करे पर करते हैं एंडो, थोड़े सीधे हम थोड़े थोड़े ब्लैक हैं, हम आगे बाकी सारों में लैग हैं, सौ बात की बात है कि हम चाहे कुछ भी न करे बेटे उसने भी स्वैग है।

0: 희진도 비점락에 대해 그 이벤트 하나 आत्मी घर अंदर मन का आवाज सुनिए हमें तब माज माज सही नहीं खासी का एपिसोड में रहे रा नेपाली रैप एंड रिमिक्स सॉन्ग लाने कार्यक्रम इस संदी रहे को सॉन्ग याद आज मा इन्हें सॉन्ग लाने कार्यक्रम इस संदी नहीं रहे को सॉन्ग रिश्ता साथ दिले तो सुनेर भर पर मनोरंजन लेने सकन होने इशो रा इलेको लाग मिनिस वीडियो लाना करी के कार्यक्रम से फिर आज मा रिमिक्स सॉन्ग रहते कार्यक्रम इस संदी दे इशो ये गीत सार दे इशो स्वीकार हो सकता
1: बुआ यो समाज को अत्याचार ले गर्दा

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टुडियो साइट
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301